0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: होर जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रहा ही नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जेड़ा गुरु करदा है श्रद्धालु है प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहते चलो उन्हों का दान एक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण का सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए खंडे बाटे का अमृत छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत बलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: जिहड़े पांडे ने तीर्थां दे उत्ते जाके फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं उत्ते तीर्थां ते जाके दान देना है तो महाराज सच्चे पातशाह कहते इन्हां नूं भी दान नहीं देना पांड्या नूं इत्यादिक वो पिछे जे नौवें पातशाह गए सी गया उत्ते जां होर ना स्थानां ते कहने महाराज सरबंस दान करो महाराज की पालकी भी लै ली होर सारा कुछ ही लै लिया। महाराज दसवें पातशाह ने फिर सारे हुण मना कर दिता है किते नहीं जाना होर ना किते उत्थे दान देना ना होर था ना इन्हां तीर्थां ते जाके पांड्या नूं दान देना कहने गुरु घर दे विच ही देना जो देना इस करके ये गल पक्की कर लो।
1: रहै एकांत प्रीत जन दूर मम विचार सो नित भरपूर।
0: तो साडे विचार गुरबाणी दे विचार इन्हां दे विचार करे एकांत रहे ते प्रीति रखे परमात्मा दे नाल।
1: सिख पुगावै मेरा सिख केस पेस ने मेरो ब्रिख।
0: तो इस करके सिख पुगावै मेरा सिख मेरा जेड़ा सिख है ना वो सिख नूं शिकावे भाव गुरसिखां दी संगतां दी सेवा करे तो इस प्रकार केस भेख जेड़े रखे हुए ने वो मेरो ब्रिख बिख तो भाव जहर रूप जिन्हां ने भेस ही केवल बनाया होया है वो तो जहर रूप है उन्हूं खवाउणा ते खाणा।
1: दोहेरा हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग।
0: हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग सो सकेस हुंदा सहत केसां दे जां केसां तो बिना मेरा होवे निसंग निसंग होके जिहड़ा मेरा बन जावे।
1: बामण सोई ब्यास सम दीवै दान उमंग।
0: सो ओ जिहड़ा है ना केसा तो बिना वो जे केसा वाला बन जावे गुरु घर दा सिख बन जावे वो तो फिर ब्यास वर्गा बन गया ब्यास मुनि जी वर्गा बन गया क्योंकि उत्साह दे नाल कहिंदे असीं कुछ दे सकदे आ ऐसे जिहड़े गुरसिख बन गए होर सारा कुछ छड़ के।
1: कन्या देवै सिख को लेवै नै कुछ दाम।
0: सिख नूं कन्या देवे पर दमड़े ना लवे बेचना आदक दी क्रिया करनी फिर इसे प्रकार दाज दहेज आदक तो सतगुरु ने मना ही कीता है।
1: सोई मेरा सिख है पहुंचे लै मम धाम।
0: ओही मेरा सिख है ओ लै के मेरे धाम अपड़ेगा भाव मेरे सचखंड घर दे विच आवेगा ओ की लै के आवेगा जी कहिंदे पुन्न ओ पुन्न कट्ठे करेगा जेड़ा बंदा चंगे कर्म करेगा साडे दसे राह ते चलेगा।
1: सरवर गुग्गा पीर जे जोगी भूत ना सेव।
0: एक सुल्तानिए पीर सरवर ने जेड़े एक गुग्गा पीर जेड़ा है एक जोगी जेड़े ने एक भूत इन्हां दी सेवा नहीं करनी ऐवें कितें जाके उत्थे मत्थे टेक लो थां थां दे इह बड़ियां तुच्छ जिहियां चीजां ने जिन्नियां गिणियां ने इन्ने ओह नहीं है कि जिन्हें गुरु साहब के बराबर किथे चले जाणगे। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े पूर्ण भाई सिंह ने ना गुरु दे उन्हां दे ते इह सारियां चीजां दास ने सेवादार ने हथ जोड़ के उन्हां कोल खड़दे ने आके भी जे सिंह हो के उधर नूं तुरिया जावे महाराज कहिंदे ओह भी साडा फिर सिंह।

0: सुपते निसमय सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है, सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है, उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है, फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने, जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी। इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी दे वचन आउणगे, सुते सिद्धी सतगुरु कवियां दी जनरल नॉलेज देखदे ने किन्नी जाए किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है, कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है, क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल दसणा नूं करिए पवित्र गद के आ

0: महाराज सारिया चीजा खालसे दसते ने बिना विआह तो कुकर्म नहीं करने चाहिए माड़े। तो इस प्रकार जिहड़ा है होर कई प्रकार दे कोई बंदे रोगी ने जा रोग लगे हुए ने जा विशे विकारी लोग ने जा माड़े कर्मां वाले लोग ने जा ये जिन्नियां भी चीजा ने इन्हां नूं आपां नूं समझण की लोड़ है। ये सतगुरु महाराज जिवें अज दे लोग प्रचार करते हैं दूर तक बड़े बड़े कंधां भरिया पईआं बॉम्बे तो बहुत ज्यादा प्रचार है आम इत्थे भी बड़ा प्रचार किया जाता है एड्स ना फैल जाए कि खतरा ना हो जाए। दसवें पातशाह ने उदों सावधान किया खालसे नूं भई इन्हां गल्लां दे विच नहीं पैना एका नारी जती होए पर नारी धी भैण विखाणा
1: सोच छेक जल असोच होए निगुरै कर अपवित्र।
0: हुण जिहड़ा सोचे जाके पानी बच जांदा इह पुराणी चीज है। चलो अजकल हुण शहरां दे विच टैंकियां टूटियां ने पहला लोग पानी लैके जाते बाहर खेतों आदक के जंगल मैदान जाना जिहड़ा पानी बच जाना लोगों ने वह अखां छिट्टे मार लेने दातन कर लेनी उहदे नाल। फिर सतगुरु ने जदों खालसे नूं अमृत छकाया फिर यह शिकायतां आउण लग पईआं महाराज यह तां अमृत की मर्यादा कई जने रखते ही नहीं है उसे पानी नाल ही दातन कुरला कर लेंदे ने। तां महाराज ने कहा ना भई यह कम नहीं करना नंगे सिर नहीं जाना नंगे सिर कोई किरिया नहीं सी कर दित्ती महाराज जी ने। इस प्रकार अपवित्र पानी की वरतों नहीं करनी जिहड़ा बच जांदा पानी डोल देना फिर जिहड़ा जूठा पानी इहदी वरतों नहीं करनी एक नगुरे का जूठा नहीं पीना इहदा भी अपवित्र मन्निया जांदा है।
1: सवान सुपच जूठा अलप कत बंदा जल असित
0: यह जिहड़ा जल असित असित हुंदा अपवित्र ते मैला पानी। सो यह जिहड़े पानी ने जिवें कोई सवान है हुण कूकर ने पानी जूठा कर दिता कई लोग कहने चलो इहदा काला जूठा हुंदा है आपां पानी पी लैने इहदा महाराज कहने ऐसा पानी कदे भी नहीं पीना कूकर आदक दा जूठा। एक वह बंदे जिहड़े अपवित्रता दा काम करदे होण खास करके इन्हां विच हुण अमृत छकिया होया बंदे दा ते बंदे अपवित्रते वाले बहुत काम करदे ऐसे लोग गंदगी आदक दा काम भी करदे ने फिर उत्थे तां अपनी पवित्रता नूं भंग नहीं ना होण देना। इस करके महाराज ने कहा देखो भाई अपवित्र पुरशां दे नाल पानी पीना उन्हां नाल बैठ के रोटी खानी ये माड़िया गल्लां ने बाकी जिहड़ा थोड़ा जिहा पानी खड़ा होवे उत्थों भी नहीं पीना पानी क्योंकि पुराने ग्रंथां च लिखिया सवा मन तो वध पानी जिथे खड़ा वो पानी सुच्चा मन्निया जांदा बाकी थोड़ा पानी जिथे खड़ा होवे क्यों हुण तां टैंकियां टूटियां ट्यूबवैल नलके बहुत ने यह पहला नहीं सी हुंदा पहला किते ही खूह हुंदा सी जां लोक आम तौर ते छप्पड़ां च नहाउंदे सी यह खड़े हुए पानी च नहाउणा उत्थे करके इस करके मना करदे सी महाराज घट बंदा घड़े विच देर दा पिया होया पानी जिहड़ा उत्तों ढकिया होया वह मुश्क मार जांदा किरम पै जांदे ने वह पानी नहीं पीना मैला पानी नहीं पीना। इहां पानी वी ध्यान नाल पानी पीण तों नहीं रोकिया पर कहिंदे पहिलां पानी देख तां लओ जे पानी तुसीं देखोगे नहीं ते पानी है कैसा। इस करके भाई पानी वी बड़े
2: तो इस करके सच्चे पातशाह कहिंदे इह जिहड़ियां सारियां चीजां ने ना इह अयोग ने क्योंकि वेदा पुराणा विच भी कहा है कि जिहड़ा बंदा शंकर वर्णिया है मलीन है मैला है तंबाकू की वरतों करदा है शराब की वरतों करदा है मीट आंडे आदक की वरतों करदा है माड़ियां चीजा सारी जिहड़ा बंदा खाई जांदा है।
1: श्रोता सुन नारक पसो अनकुलीनी जोग
2: सो इस करके कहिंदे ने जिहड़ा श्रोता है श्रोते नूं भी नुकसान है ते कथन करन वाले नूं भी नुकसान है तां ते कहिंदे ने जिहड़ा ये हर बंदे नूं नुकसान ही नुकसान हुंदा इन्हां गल्लां दे विच क्योंकि कई चीजा आ जांदियां ने खुद बंदा माड़ियां चीजा खांदा पहलां भी आ चुक्या इशारा दुबारा फिर कहिंदे ने हुण कई बंदे अपने पंथ विच एक पंथ विच अपने इन्ना वधिया कथावाचक होया इन्ना वधिया कि लोग उहनूं सुणदे ने अज भी उहदियां कैसटां सारे देशां चलदियां ने हुण तां चढ़ाई करके उहनूं काफ़ी साल हो गए उहदियां किताबां भी ने छपियां होईयां। उह बंदा बेहद शराबी सी जिथे जी करे पी के डिग पैंदा हुंदा सी पर लोग हले भी सलाही जांदे ने उहनूं पर उह बंदे दा की प्रभाव पैणा किसे बंदे उत्ते जिहड़ा आप ही डिग्गिया फिरदा। इस करके इत्थे सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा बंदा धार्मिक है ना जिन्हें खास करके उपदेश करना है

0: चेला होगा कोई वह अपने गुरु को समझाया करेगा जाके नहीं गुरुदेव यह गल इस तरह तुम हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन गलों का पता भाव हूं भी तो समझाते ही आके हूं भी तो कह रहे गुरु ग्रंथ साहब जा पिछौर सिंह प्यारा सिंह अर्गे उठ खड़े हुए सी हूं होर ही खड़े दसम ग्रंथ के विरुद्ध होर गल कर रहे ने यही जी तो गल है यह कहने इन्हों नहीं पता है असल तो सानू पता साडिया बुद्धियां ज्यादा कम कर दिया ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा जे ना पीए गाली नहीं चलता है कई तो इउं कहंदे ने भी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहना आवाज नहीं निकलती यही तो गल साफ करने वाली चीज है
1: नहन तजे काया दुखी खामे बोर च पाए
0: इस करके कहने ने कलयुग दे विच कैसा होवेगा नहन तजे काया दुखी जे नहाना छड़ देणगे क्यों नहाउंदा क्यों नहीं बस एवं शरीर जा दुखी जे यकीन आके लैना ते जे

0: थोड़ी करनी करनगे लोग ते थोड़ी करनी दा फल ज्यादा होया करेगा। इस तरह तिना युगां दे विच अपने समय च जान रखी कि नाम दी थोड़ी करनी दा फल बहुता। पहलिया युगां विच लोग लखां बरस तप कर कर मर जांदे सी पुठे लटक लटक के, उदों नहीं सी इन्ना फल मिलदा हुंदा लोकां नूं। पर कल युग दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आप भी यह वचन लिखे ने, एक चित जे एक छिन त्यायो काल फास के बीच ना आयो।
1: पर अंशी पर नार तज नाम सिरा है सुवात।
0: इन्हां गल्लां दा ध्यान रखियो, तीन चीजां दा, पर अंश खाणी पराई इस्त्री वल जाना, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੀ, ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਸ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ

कौन बोलता दसवें पातशाह महाराज सच्चे पातशाह गुरु बहादुर शाह गया जदों श्री हजूर साहब लंगर साहब के पिछले पासे जिहड़ा स्थान है महाराज जी का सो गुरद्वारा नगीना घाट के हीरा घाट है थोड़ा जिहा फर्क पै जाता मैनू तो उत्थे बहादुर शाह ने जब मत्था टेकिया सी तां महाराज सच्चे पातशाह नूं जाके कहिंदा एक खुदाए पे एक खुदाए दसवें पातशाह कहिंदे तीन खुदाए पे तीन खुदाए कहिंदे महाराज एक खुदा तुसीं तीन कहते हो महाराज कहिंदे हुण तीन ही है खुदा एक तां खुदा मुसलमानां विच है उहनूं तां तुसीं सत्कार दिओ एक खुदा हिंदुआं विच है वह माड़ा है एक सिखां विच है वह भी माड़ा कहिंदे जिहड़ा जिहड़ा खुदा तुहाडे च मुसलमानां च उह चंगा इउं करके भाई वीर सिंह ने फिर सारी कविता बनाई है भाई वीर सिंह ने बड़िया सोहनिया कवितावां लिखिया साड़ी छुपे रहने की चाह साल ना होया कोला किथे जाके चिट्टा होया लाल होया कहने अग की भट्ठी च पाता कोला लाल सुरख हो गया कहने यों ही काले मन नूं धोंदे रहो जिथे मर्जी कर्म कांड करी जाओ ए बंदे का काला मन किते शुद्ध नहीं हुंदा जद कहने संगते च लिया के बिठाया यही मन लाल रंग दा हो गया कहने लाल रंग तिसको लगा जिस केवट भागा मैला कदे ना हो वही न लागै दागा जा संगत विच बिठा के इनू नाम दा ताओ दिता ता इनू हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठा रंग गुर टुठा हर रंग चाढ़िया फिर बौड़ ना हो।

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करते ने चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि यदि जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इस प्रकार आइयो सतगुरु महाराज ने आपां गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो ए भी बहुत विचार वाली चीजा ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून के मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है, जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

0: झूठ है इहदी इन्नी क्यों निंदा करदे ने सारे माड़ा क्यों कहंदे ने
1: कलयुग कैसे वरतीए एक इन कीन मनिंद
0: कलयुग विच किवें वरत गया है यह तंबाकू दोने सियाने सन पाड़े तो पढ़े लिखे भी हो सकता है इस करके कहने बड़े सियाने इन्होंने महाराज नूं पुछिया कि आप जी कोल आए शरदा नाले प्रसंग सुनिया तंबाकू दा भी ये तंबाकू महाराज जी मना क्यों करदे हो इहदे विच की ऐसा पाप है गुनाह है
1: श्री सतगुर बोलत भए मेरी बात परतेत
0: महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मेरी गल दे उत्ते हुण प्रतीत नहीं आई भरोसा करो तुसी हिंदू धर्म नाल संबंध रख के सुल्तानिए पीर नूं मंनदे हो इस करके तुहानू तुहाडे ही धर्म दे विचों सुणाउंदे आ कि किन्ना माड़ा है तंबाकू
1: सकंद संगता शिव कहे कथा भविख त्रेत
0: सकंद संगता दे विच शिवजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी का नाम सी उन्हूं सकंद भी कहंदे ने उन्हें पुछया सी कि पिता जी ये तुसी बूटी तो मना क्यों करदे हो भी नेड़े नहीं जाना देखनी नहीं बड़ा सख्ती नाल ताड़ना करदे हो ये बूटी च ऐसा की नुक्स है जी
1: सकंद पुछा हे पिता जी जगत झूठ क्या निंद
0: तो सकंद उहदा नाम सी कहण लग्या पिता जी ये जिहड़ी जगत झूठ है इहदी इन्नी क्यों निंदा करदे ने सारे माड़ा क्यों कहंदे ने
1: कलयुग कैसे वरतीए एक इन कीन मनिंद
0: कलयुग विच किवें वरत गया है यह तंबाकू दोने सियाने सन पाड़े तो पढ़े लिखे भी हो सकता है इस करके कहने बड़े सियाने इन्होंने महाराज नूं पुछिया कि आप जी कोल आए शरदा नाले प्रसंग सुनिया तंबाकू दा भी ये तंबाकू महाराज जी मना क्यों करदे हो इहदे विच की ऐसा पाप है गुनाह है
1: श्री सतगुर बोलत भए मेरी बात परतेत
0: महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मेरी गल दे उत्ते हुण प्रतीत नहीं आई भरोसा करो तुसी हिंदू धर्म नाल संबंध रख के सुल्तानिए पीर नूं मंनदे हो इस करके तुहानू तुहाडे ही धर्म दे विचों सुणाउंदे आ कि किन्ना माड़ा है तंबाकू
1: सकंद संगता शिव कहे कथा भविख त्रेत
0: सकंद संगता दे विच शिवजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी का नाम सी उन्हूं सकंद भी कहंदे ने उन्हें पुछया सी कि पिता जी ये तुसी बूटी तो मना क्यों करदे हो भी नेड़े नहीं जाना देखनी नहीं बड़ा सख्ती नाल ताड़ना करदे हो ये बूटी च ऐसा की नुक्स है जी
1: सकंद पुछा हे पिता जी जगत झूठ क्या निंद
0: तो सकंद उहदा नाम सी कहण लग्या पिता जी ये जिहड़ी जगत झूठ है इहदी इन्नी क्यों निंदा करदे ने सारे माड़ा क्यों कहंदे ने
1: कलयुग कैसे वरतीए एक इन कीन मनिंद
0: कलयुग विच किवें वरत गया है यह तंबाकू दोने सियाने सन पाड़े तो
1: पुरख वाज गोमेद कयो औखद दे सिद्ध तूर
0: ओ जेड़ा मुनि बैठा सी उने इनू कहा जमेर शाह नूं चंगा हुण तेरी तपस्या बहुत हो गई है तू गोमेद जग कर गोमेद जग पछम विच जाके कर तो इने इनू प्रेरित कीता कि जिथे गोमेद जग होवेगा क्योंकि ए जग कलयुग विच नहीं करीदा ये सतयुग का त्रेते का ही जग है इन्हें जान बुझ के जग करवाया भी जिदे च गऊ की बलि दिती जाती है जिथे फिर गऊ मरती है कलयुग च उथे तंबाकू पैदा हो जाता क्योंकि गऊ हत्या के तुल होने करके उस ऋषि ने इनू कहा अजमेर शाह नूं कहिंदा जे तू ए बूटी नूं ग्रहण कर लेंगा ना ए बूटी दुनिया के राज करवावेगी तेथों फिर इस करके पहला ये बूटी नूं तैयार कर
1: पश्चिम गोमे दी धरन सिद्ध खाल ते ले आए
0: जदों ये गया फिर उथे अजमेर शाह पछम दिशा विच जिथे गोमेद जग होया सी फिर काफी देर बाद उथे उस हवन कुंड विच एक बूटी पैदा हो गई ओ बूटी तंबाकू है जिथे गऊ मार के इन्होंने गोमेद जग कीता क्योंकि कलयुग दे विच ओ जग करना मना है समय समय की गल है इस करके जदों उथे बूटी पैदा हो गई क्योंकि साधु ने यह गल कही मुनि ने उन्हें की कीता खाल का मतलब हुंदा ऊठ ऊठां दे उत्ते बूटी भर के कितनी सारी हजारां दी गिनती विच ऊठ भर के ए बूटी हिंदुस्तान दे

एक खूह बना और जो श्वास ने तेरे इना माला बना के माल बना के एक एक श्वास पिंडा बना महाराज इस माल खिचे कौन अकालता बख्शे इस माल खूह आए खिचे कौन किस पीतर मन जो सरवण किया इस पीतर बलदा की जगह से इन खिंचन किनू जो उच्चा कौन किनू जो मन बिच जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए इस खूह दिया माला टिंडा खिंचन लिये मन बलद बनाओ मन तो साडा सिमरन करद भी दौड़ता रहा है साहब कहते ने तू मन जोड़ के इना टिंडा खिंच अगे जाके कहते अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटी छोटी मटा पा के खेत दे पाती दे खेती बाड़ी करते तुम पता पिंड वाले खेती बाड़ी करने वाले पता क्यारे पा दी साहब कहते ने अंदरों मन नू जो के आ जी श्वासा की पिंडा की माला ए मन नू जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे तो मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर से कहड़े प्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम महाराज खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे कहे कहते अखा नाम जपन वाले दमृत ना भर दिंदा अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पे आखो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पेगा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पेंदा है फिर आखिया महाराज होर केड़ा क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर दिंदी गल करन लगता वा फिर कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपन वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नू जो इस श्वासा की माला बना मगर यह जे बरतना होया जे मन नू तू ना विच जोता सिमरन विच मन नू ना जोड़िया ते टिंडा की माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आना नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नू बिच जोना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओ तो गज के बोलो ना तो

0: तुम्हारी बहुत बहुत।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करो कृपा सारे आखो आद सच जोगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्णन सको।

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

प्यारे ने जरा मंत्र दिता अपन की मंत्र दिता ही गुर मंत्र केड़ा शब्द दिता ही गज के बोलो जी केड़ा भेनो बची दिता सी वाहे गुरु गुर मंत्र है वाहे गुरु जप होमे खोई ए जो गुरु दा मंत्र जेड़ा पांच प्यारे साहबाना नू आपां नू दिता है मेरे साहब जी कहिंदे ने संती मंत दियो मोए निरभउ गुर का शब्द कमाया गुर का शब्द कमाई कीती अमृत वेले उठ खलोता केसी स्नान कर ले किसे रब्बी रंग विच जुड़ के अपने प्रीतम प्यारे नू याद करन लग पिया सतगुरु कृपा करे तुहाडे उत्ते ते मेरे उत्ते मेरी ओ बचियो भैणो गुरसिखो केवल ते केवल मैं कल भी कहा सी लंगर लाउणा मुबारक आ गुरुद्वारे गुरुद्वारे आउणा जुड़ के बहना इकट्ठ करने मुबारक ने मगर इथे आण के गुरुद्वारे होए सोजी पाए सी भांडा अत मलीन धोता हछा ना ए मलीन भांडा बार सर्फ नाल धोत्या शंपू नाल धोत्या भोलियो इना शुद्ध नहीं होना ए जे भांडा शुद्ध होना है ते गुरु दे प्यारे ओ भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नाम है के रंग नाम दे रंग विच नाम दे प्रेम विच डुबिया ए भांडा शुद्ध होना है इस करके आपो अपने भांडे नु गुरु शब्द दे नाल धोया करो मेरे साहब कहिंदे सहिसे जियो मलीन है कि तो संयम धोता जाए ते अगे आप ही जुगती दसी मन धोवो इस पापी मन नु मैले होए मन नु धोवो आख्या जी केड़े साबण ना धोईए कहिंदे शब्द लागो की आख्या शब्द लागो मलो इनू वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु इतना तो इस मन जन्म जन्म की इस मन को की लगा जी मल लगी है मल मल मैने मैल एक जन्म दी नहीं कई जन्मा दी मैला मन होया है कई लोकी मेरे भैन भरा कहिंदे जी करिए की बाणी भी तू पढ़ते अमृत भी छकिया नितनेम भी करते मन नहीं टिकदा पता मैला किन्ना है पहलो शुद्ध ते करो ते शुद्ध करनु ओ चीज वरतो जेड़ी गुरु ने दसी है ओ चीज ओ साबण लाओ जेड़ा गुरु ने मन धोवो शब्द लागो हरसो रहो चित लाए गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहिसा एवं ए सहिसे इतरा मुक जाणगे जेड़े मैल दे बने ने गुरु कृपा करे आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करन तो पहलो मैं आप जी नु बेनती करना घर दे विच की बोलना है पंजाबी ते रोटी खान तो पहलो की आख्या सी पांच बार बोलना बोलिया सी गुरु ने कृपा की तुहाडे उत्ते मेरा आना सफला हो गया मेरा तुहाडे जोड़े झाड़ने सफले हो गए इथे आण के गुरु नानक पातशाह दे घर दरबार लगाउण दा मेरे सतगुरु दे घर कथा कीर्तन करन दा यह फायदा हो गया कि भुली भटकी रूह दे मुंह निकल गया सतनाम श्री वाहेगुरु मेरा सतगुरु कृपा करे अपने बच्चिया दे सिर ते हाथ फेरिया करो पलोसिया करो अपने बच्चिया नू रोटी देण लग्या आख्या करो हुण इन्हां नूं राय पाया जा सकदा है हुण इन्हां दे अंतशकरण विच भरिया जा सकदा है सतनाम वाहेगुरु अजे छोटे छोटिया दे सिर ते हाथ पलोस के आख्या करो पुत रोटी खाण तो पहलो बापू जी कहिंदे ने पंज वार कहना है सतनाम श्री वाहेगुरु जे किते इन्हां दे बेस विच इन्हां दी नींद दे विच सतनाम वाहेगुरु आ गया ते सच जाणियो गुरु दे प्यारियो ओह दिन दूर नहीं जिदन तुहाडे बच्चे भाई तारू सिंह वर्गे बच्चे बणगे जिदन तुहाडी औलाद भी बाबा दीप सिंह वर्गी बणूगी मां ही सब तो वड्डा गुरु है जे मां बच्चे नूं घड़ना चाहे दुनिया की कोई ताकत बच्चे नूं बिगाड़ नहीं सकती मेरा सतगुरु कृपा करे मेरी ओ बचियो मेरे ओ वीरो गुरसिखो जेड़ा वचन आप जी दे नाल हाथ जोड़ के कीता वा अपने बच्चियां नूं गल विच लैके आख्या करो रोटी खाण नाश्ता करन तो पहलो पुत एक बार आख सतनाम श्री वाहेगुरु मेरा सतगुरु तुहाडे बच्चियां नूं सिखी बख्शे आओ हुण जेड़े वचन बाबा फरीद जी दे अगले आप जी ने सरवण करने ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल कल आप जी ने सुन लिया सी जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख अपनड़े गरीबान में सिर नीवा कर गरीबान दा पता है ना आप जी नू अपनी चादर दी बुकल विच झाती मार अपने चोले दे अंदर झात तू की है लोकां नू मतां देण वाले अपने अंदर झाती पहलो मार ते फिर बापू ने ए गल अगे प्यारे बड़े वचन कहे सी फरीदा जोत है मार न मुकियां

तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किश दीजे, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए
0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

0: फिर लहू दे फुहारे छुट्टे प्यो दी जिंद निकलदी निकलदी पुत दे मुंह वल वेख रही आ ते प्यो पुत वल वेख के कह रहा धन सिखी ते पुत प्यो नू वेख के कह रहा धन सिखी मेरे पिता जी तुसी धन दे सिखी च पूरे उतरे हो बजुर्ग होके भी ते बजुर्ग प्यो कह रहा वा मेरे पुत्रा तू नौजवान होके ए चरखड़ी दे दंदियां ते बह के सिखी न पाई आ तेरी धन सिखी कदी इना ध्यान दियो एकाग्रता भी जो सिजो कंबली अल्लाह वरसे मैं हूं अगे जी
1: जाए मिला तिना सजना टुटो नाही ने हो
0: जावा उस मालक दे चरणा विच जावा दर्शन दीदार करा अपने मालक नू मिला गलवकड़ियां पावा जेड़ी मेरी भोखिया भवरे दी भोखिया वाशना भवरे दी भोखी आ वाशना मगर असी कि तरह दे भवरे बन गए असी फुलां दे प्रेमी बन गए वाशना दे नहीं आखो सतनाम श्री फर्क समझ लिया फर्क समझ लिया कि नहीं आपा घर घर दे विच गुलदस्ते एडे एडे फुलां दे लिया के रखे ने ते किसे भौरे नू आखो किधर चलिया कहिंदा मैं फुलां दी फुलवाड़ी चलिया कहिंदा की लैण कहिंदा मैनूं फुलां नाल प्यार आ फुलां दी सुगंधी नाल प्यार आ ते तुसीं आखो आ जा कोई गल नहीं अज मेरे घर चल मेरे घर भी बड़े फुल ने ध्यान दियो मेरे घर भी बड़े फुल ने ते चार सवेरे घूम के चल जूगा उन्हें उन्हें फुलां नाल वेखना ही नहीं क्योंकि उन्हें पुछया मुन लगे नू मुड़ चलिया वा उथे कोई अलोकार गुलाब दे फुल नहीं आवे किड़े किड़े सुंदर गुलाब दे फुल ने उन्हें कहा सजना ए फुल बनौटी ने इन्हां विच कुछ नहीं जिहड़ियां साडे घरां विच भी बाबियां दियां फोटो लगियां ने ना करमा वाला गुरु दा सिख इन्हां बाबियां वल नहीं वेंदा क्योंकि उन्हां दे विच सुगंधी नहीं सुगंधी आ ते केवल जागदे जोगदे जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक बाणी विच गुरु नानक साहिब ने वचन कीता रसिया होवे मुश्क का बोलो रसिया होवे तब फूल पछाणे जे कोई जीव आत्मा प्रेमी होवे वाशना दी ते ओ आखूगी ए गुट्टे दा फुल आ ए चमेली दा फुल आ ए फलाने दा फुल आ ते जे वाशना दा ना प्रेमी होया केवल फुल दा होया ते आखू ए फुल ने इस करके गुरु दे प्यारे ओ वाशना नाल प्रेम करना है ओ वाशना गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों मिलदी आ केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों मिलदी आ दुनिया ते कोई पीर कोई पकंबर कोई देवता जेदी पूजा करन आप जी नू नहीं किया इको ही गल आप जी नू गुड़ती दे विच पाई गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिया गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई आख दियो एक बार गुरा एक देह बजाई जिया का एक दाता सो मैं उस गुरु दे लड़ लगो जेड़ा सारे संसार दा प्यो आ सारे संसार दा पिता है मेरी हाथ जोड़ के आप जी सारे नूं बेनती दे अगले एतवार इस वेले नूं अमृत दा बाटा तैयार होना है अमृत वेले 7 बजे दा टाइम रख देना है क्योंकि दीवान लगन तो पहलों पहलों अमृत दा बाटा तैयार हो जाए मेरी हाथ जोड़ के बच्चिया वीरां गुरसिखा सारिया दे चरणा विच बेनती है गुरसिख प्यारियो ये फर्ज समझो जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपे अवरै नाम आप अमृत छकिया जे ते दसो संसार दे लोकां नू यह अमृत बड़ा मिठा है दसो संसार दे लोकां नू कि अमृतधारी सिख दा जीवन होवे जन्म सुहेला असी सुखी हां लोकां नू दसो कि असी अमृत जिदन दा छकिया वा साडे घर विचो 100 वैवता निकल गईयां साडे घरों विचो बीमारियां निकल गईयां साडे घरां विचो परेशानियां निकल गईयां संसार दे लोकां नू प्रेरो होर नेमियां प्रेमियां नू प्रेरो मेरे सतगुरु कृपा करन कलगियां वाले पातशाह कि उदन आपां वड्डी गिणती विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे धीआं पुत बणीए ते मेरे सतगुरु दीआं असीसां लईए प्रचार करन दा कथा करन दा संत बाबा हरदेव सिंह लूलो कलां वाले एक दिन बचन किसे दी कैस्ट विच मैं सुन रहा सां ओह कहिंदा कणक ते बड़ी बीज दी उग भी बड़ी पैंदी वड्ड भी बड़ी लईदी मगर पता ते उदन लगना जिदन बोल किन्ना क लगदा है कथा तां सुन लई कीर्तन दरबार ते करा लै पता उदन लगना गुरमुखो प्यारियो जिदन ए पता लगे कि 15 दिनां दी कथा ते कीर्तन दे विचों किन्ने गुरु दे सिख सजे ने इस करके आप आयो ते होरनां नूं प्रेरियो संदेशा दियो कि अमर शकीए गुरु वाले बणीए भुलाना च तारनिया वड्डी गिणती विच आउणा वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करू आ प्यार नाल आण के दोवें बाहां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बाहां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते औगण वाली नूं ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने औगण यारी कंत न पावे बोलो औगण यारी सारे बोलो जरा औगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी औगण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उहदा सुभाअ नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहनां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वो

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है। कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाजपत रखदा है। जेड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उन्हां ते शतर अनेक चलावत कावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हाथ उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बगदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुट्ठा मूह थले नूं लत्तां तां नूं ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नु याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहगुरु की याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छड़ाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छड़ाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छड़ाया, खसम दे वाहेगुरु ने। ते जदों इथों छड़ा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के उथों छड़ा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छड़ा के बाहर लिया विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गर्भे निकल आया। जदों बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार
ਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਅਗਨ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜ ਜੂੰਗਾ ਆ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ

0: पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास सतगुर पास
0: जी पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास पूरे सतगुर पास
0: ओए नमाणी तै पवा नमाणी होके नमाणी आखा अपने आप नू महाराज मैं नमाणी आ मेरा कोई मान नहीं साची लेवे बिन ए नमाणिया दे महाराज तेरे चरणा विच टैगी आणके इनू शब्द बख्शे शब्द लाग सवारिया इनू शब्द दे नाल जोड़ दे जिहदे नाल इहदा जीवन सवर जावे ते बाबा फरीद जी कहिंदे ने मैं ते भुल्या रहा कि जे किते तै पिया नीवा हो गया धरती ते मत्था टेकिया खुदा नू नमस्कार कीती ते किते मेरी चिट्टी पग ना मैली होए मैं भुलावा पग दा बोलो मैं भुलावा
1: पग दा
0: मैं भुलावा पग दा मत मैली होए बहुतिया नू सानू ए ही रहिंदा जिन्हू किसे नू कह के वेख लो जी जूठे बर्तन साफ करियो कहिंदे जी करन नू जी ते करदा कपड़िया ते छिट्टा पैंदियां एक गुरु दा सिख आनंदपुर साहब एरकां दसंबर दे विच आनंदपुर साहब सतगुरु गरीब नवाज दे चरणा च जाण दा मौका मिलिया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चरण छो प्राप्त की पावन धरनी नू करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ जन्म करके नमस्कार जिथो सखी का जीवन आपां नू खालसा ही जीवन मिलिया उथे बाबा लाभ सिंह साहब दे बाबा सेवा सिंह साहब दे लंगर विच एक गुरु का सिख बड़े सुंदर कपड़े पाए ते हर गुरसिख की आण के थाली चुक के ते थालियां चुक के साफ करदा फिरे एक सब्जी का छिट्टा उठिया ते ओदे सुंदर चिट्टे चोले दे उत्ते पै गया आखो सतनाम श्री नहीं गज के आख्या करो वजन बड़ा कीमती आ आपां हौली उदों बोलदे आ जदों गैर हाजिर हुंदे जुड़ के आखो सतनाम श्री सब्जी दा चिट्टा पै गया चिट्टे चोले दे उत्ते ते किसे ने लागों आवाज दित्ती गुरु दे सिखा तेरे चिट्टे चोले ते चिट्टा पै गया दाग पै गया दाग कहिंदा सज्जणा ओ जिहड़ा मेरा बापू आ ना वेखण वाला ओनू पता वा कि ए दाग कित्थों लगा ते दूसरे दाग कित्थों लगदे जेड़े दाग ओ इक ओ नेड़े ठेके चो लगदे दाग दोष मुंह चलिया लाए पढ़दे हो ना दाग दोष मुंह चलिया जेड़े दोषां दे दाग लगदे ने मेरे गुरु नू ओदा भी पता है ते मेरे गुरु नू इस दाग दा भी पता वा कि ए जे सोड़े झाड़दे आ जूठे बर्तन साफ करदे आ शरीर दे उत्ते पिया वा ए जेड़े दाग लगे ने ए जेड़े छिट्टे पए ने इन्हां छिट्टियां वालियां नू ते मेरा कलगीधर पातशाह गलना लाउंदा गलना ते बाबा फरीद कहिंदा जदों मैं कदी नीवा होण दा जतन कीता ते मैनू ए भुलेखा रहा कि किते मेरी पग ना मैली हो जाए मगर मेरी पागल रूह ए नहीं सी जानदी हां जी
1: गहला रूह न जानई सिर भी मिट्टी खाए
0: बाबा फरीद जी कहिंदे मेरी रूह गहली मेरी कमली रूह ए नहीं सी जानदी कि तू ते किना किते पग नू मिट्टी ना लग जाए ए ते सिर भी एक दिन जेड़ी सिर दे उते तू ए सुंदर पग बधी है ए सिर भी एक दिन मिट्टी ने खा जाणा मिट्टी ने कबर दे विच दग देना है जै सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवारे काग कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे ए सिर दा मान ए पग दा मान करदा है ओ भोलिया ए शरीर भी एक दिन मिट्टी ने खा जाना है ए शरीर भी जां ते लकड़ियां ते सड़ के सवाह हो जाना है ते जां कबरदियां विच कितड़िया जुग वापरे इकत पया पास इट सराणा पोए सवण कीड़ा लड़ियो बोल सोली कीड़ा लड़ियो एक दिन ओ जिदन आना है जिदन कबर पुटी जानी है कबर दे विच तेनू लटा देना है उस कबर दे थले सराणा नहीं होना तेरे थले ते तेरे सिर दे थले इट रख देनी इट सराणा पोए सवण ना कोई थले तलाई विछाउणी तेनू मिट्टी उत्ते ही सवाउणा है मिट्टी नू मिट्टी उत्ते ही पा देना है इट सराणा पोए सवण सजना कीड़ा लड़ियो मास फिर कितड़िया जुग वापरे इकत पया पास किन्ने जुग बीत जाने ने तू मिट्टी विच मिट्टी हो जाना है इस मिट्टी तो ना डर ए ना सोच के जे मैं जोड़े झाड़ूंगा मेरी पग नू लग जाणगे सजना ए जोड़िया की धूड़ी जेड़ी है ना ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਕਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤਿਰਵੈਣੀ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ
1: ਇਸ਼ਨਾਨ,
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੇ, ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸਰਣੀ ਪਾਵਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣ ਸੰਗ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ। ਆ ਬੋਲੋ ਜਨ ਕੀ
1: ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ,
0: ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਨ ਕੀ
1: ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ,
0: ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਕੀ।

नानक बोले बलाया तेरा, नानक बोले बलाया तेरा, ज्यों बला मैं त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी, ज्यों बला मैं त्यों बोला स्वामी,

0: साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। तनता दे जोग जे जो तन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरबार करके तन हो रहे हो। भाई गुरुदास जी का एक पावन बचन सारे पढ़िए। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
1: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
0: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
1: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है।
0: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख परसन आया,
1: धन धन गुरसिख परसन आया, धन गुरसिख परसन आया,
0: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख परसन आया,
1: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख।

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सर्वत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव और महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जिन दुनिया दे मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पतियाए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश हो के आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणजक।

0: देख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठियां लिखियां ने मिशनरी कॉलेज वालिया चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया चिट्ठियां लिख उन्होंने दुखी ते लिखे ने उन्होंने यही तो लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया के मालिक जी मैं तुहानू आ बेनती कर दी मैं तुहानू आ बेनती कर दी जीव आत्मा वालों चिट्ठियां लिखिया कदी पढ़े कदी चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया फिर बोलो चिट्ठियां लिख आपा भी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया के मालिक एक छोटी जी बच्ची आसनसोल पांच क साल की बच्ची सवा क लख का इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके का ट्रकां वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसनसोल हजारी बाग ए शहर बड़े सारी संगत वाल हाथ जोड़ के कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहिंदी ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक की है बोलो नीला घोड़ा ते ओ बची सारी संगत वाल हाथ करके कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा च हाथ जोड़ दी नीले नु कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा विच हाथ जोड़ दी एक बार मुड़ के आ एक बार मुड़ के आ ते अपने सवार नु उत्ते बाल के लिया ते मैं तेरी लगाम फड़ पांच साल दी बची कह रही मैं तेरी लगाम फड़ लूंगी ते मैं एक एक सिख दे घर विच तेरे सवार नु लैके जाऊंगी ते जदो घर दे विच बच्चियां दे कट्टे केस दाड़ियां कट्टियां शराबां दियां बोतलां मास पिया विखाऊंगी ते मैं आखूंगी नीले दे शाह सवारा इन्हां लई पुत वार के गया है इन्हां लई मां वारी सी इन्हां लई प्यो वारिया सी आ वेख तेरा सारा पंथ अज तेरे तो बेबुक हुंदा जांदा ही मेरा कहने का मतलब है तुसी भी एक बार बापू नू कहो तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडा जीवन हो गया चिंता दी मंजे ते सुते ही दुखां दा वाण ही चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावण लेव तलाई विछोड़े दी विछियू इस तरह के मंजे ते असी जीवन बतीत कर रही विछोड़े दे विच सड़ रही तेरे दे विच अगला वचन सरवण करो जी
1: बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान
0: बड़े सुंदर वचन किते ने बाबे ने हुण समाप्ति करांगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री बाबा कहिंदा दुनिया कहिंदी विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा बड़ा माड़ा आपां कहिंदे ना विछोड़ा बड़ा माड़ा है एक थां ते लिखिया गुरबाणी दे विछोड़ा सुने दुख विछोड़ा विछोड़ा एक एहो जिहा शब्द है जिहदा नां लिया ही दुख हुंदा है मगर इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यार दे वचन विच कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए लोकी कहिंदे विछोड़ा विछोड़ा मगर बिरहा तू सुल्तान तू ते बादशाह बिरहा तू ते पातशाह केड़ी गलो जी हां जी
1: फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान
0: कहिंदे जेदे विच हिरदे विच ए विछोड़ा ही नहीं जेदे अंदर विछोड़ा पैदा ही नहीं होया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे जिन्हें कदी ये क्या ही नहीं जन्म जन्म